अरे चुको नाम आते ना वार्कम डी चांडी लक्ष्य करो अम्याना कब्जी मिली सुनारे वा शंकिंग के टुकु योना चंगमा के तीसु तंजिन चुका तीन निरकुप से लिए सुना शंकिंग में ना अति शामनी लिए सुनोमा के नंदी टुकु उस करे वा तार्त कोड़िक्षी ओपी लवा काजुं नाम चुक लंबी गंडुन लगस कुनु गुदोलं द कोड़िक्षी जिंबी चेचक थंदत तंचांबी मोंदेश